0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 100.1 FM गोल पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुबह भाई जानकारियों से भरा कार्यक्रम सुहानी सुबह।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल पर।
0: और एक लंबे वीकेंड के बाद अगर सुबह सुबह की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो तो फिर किसका दिन अच्छा ना जाए, है ना। ट्यूसडे का दिन और शुरू हो गया है आज से मेरे ख्याल से सबका ऑफिस कॉलेज सब कुछ। और आप सभी को मेरी तरफ से लेट ज़रूर हुआ है पर गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह की शुरुआत करेंगे न्यूज़ के साथ। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे, पर उससे पहले चलिए सुन लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा गाना आशा भोसले की आवाज़ में।

तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ। तो लिए हाथ में एक प्याली चाय की, चलिए देखते हैं क्या क्या है आज की कुछ लेटेस्ट खबरें। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ मेरे सामने आ रही है, वो है गुजरात के कच्छ से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ मैंग्रोव यानी मैंग्रोव के जंगलों को बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मैंग्रोव समुद्र और तटीय इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये समुद्री जैव विविधता को सहारा देने के साथ साथ तटों को तेज हवाओं और समुद्री लहरों के असर से बचाने में भी मदद करते हैं। भारत सरकार ने मिष्टी पहल के तहत कच्छ में बड़े क्षेत्र में मैंग्रोव प्लांटेशन का काम किया है। दरअसल मैंग्रोव में मछलियों और कई दूसरे समुद्री जीवों के लिए प्राकृतिक हैबिटेट भी बनता है। ऐसे प्रयास क्लाइमेट चेंज के दौर में खास महत्व भी रखते हैं, यानी विकास के साथ साथ प्रकृति को बचाने की कोशिश भी लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं अब चलिए बात करते हैं नेचर से टेक्नोलॉजी की ओर। अब भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है और इसी सिलसिले में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 सितंबर से होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स यानी वो छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स जो हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स और तमाम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इस्तेमाल होते हैं। भारत इस क्षेत्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन टेक्नोलॉजी कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। आसान भाषा में बोले तो जिस टेक्नोलॉजी पर हमारी रोजमर्रा की डिजिटल दुनिया टिकी है उसे देश में ही मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। आने वाले समय में इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जॉब्स पर भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे की बातें करेंगे, वेदर की बातें करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना मोहम्मद रफी के आवाज़ में फिल्म कन्यादान से।

तो दोस्तों लग रहा है ना कि बारिश के मौसम से जुड़ी बारिश ख़त्म हो गया, पर बारिश के मौसम से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बननी शुरू हो गई है। अनुमान यह है कि पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों के से करीब 19 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश के हर हिस्से में एक साथ बारिश खत्म हो जाएगी। मानसून की वापसी धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से होती है और कई राज्यों में इसके बाद भी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम का बदलाव आने में समय लग सकता है। यानी फिलहाल छाता पूरी अलमारी में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए और आने वाले दिनों का फॉरकास्ट इसी आधार पर स्पष्ट भी होगा। प्रकृति और बायोडायवर्सिटी से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प खबर भी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एंडेमिक प्लांट को फिर से खोज लिया है जिसे करीब 180 साल पहले देखा गया था। किसी पौधे या प्रजाति की एंडेमिक होने का मतलब है कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। वो लंबे समय तक किसी स्पीशीज का दिखाई ना देना वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन उसकी दोबारा खोज कंजर्वेशन के लिहाज से बड़ी उम्मीद जगाती है। ऐसी खोजें हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते। किसी दुर्लभ पौधे की पहचान सिर्फ बोटानिकल रिसर्च की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उसके नेचुरल हैबिटेट को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होता है। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। दुनिया के अलग अलग देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसे विकास पर जोर दे रहे हैं जिसमें आज की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भी लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे। इसमें क्लीन एनर्जी, बेहतर एजुकेशन, क्लीन वाटर, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क है। आज सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं रह गया है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी जुड़ गया है। दुनिया भर में छोटे बड़े स्तर पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसका मकसद डेवलपमेंट और नेचर के बीच बेहतर संतुलन बनाना है। यानी तरक्की ऐसी हो जिसका फायदा लंबे समय तक लोगों और दोनों को मिले। चलिए अब कोलकाता की ओर थोड़ा रुख करते हैं। शहर में गणेश पूजा का उत्साह इस साल और बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग इलाकों में पूजा समितियां आकर्षक थीम्स और सजावट के साथ तैयारियां की। खास बात यह कि कोलकाता की फेस्टिव कल्चर लगातार नए रंग अपना रही है। जहां एक और शहर अपनी

पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं से जुड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग समुदायों के त्यौहार भी यहाँ बड़ी गर्मजोशी से मनाए जा रहे हैं। गणेश पूजा के दौरान पंडाल डेकोरेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शहर की रौनक बढ़ा देते हैं। और अब जब दुर्गा पूजा भी दूर नहीं है, ऐसे में कोलकाता का फेस्टिव मूड धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। यानी शहर में त्यौहारों का सीजन शुरू हो चुका है और माहौल में उसकी झलक साफ दिखाई भी दे रही है। अब कोलकाता के मौसम के बारे में भी बातें करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गाना, शोया फिल्म शर्मिली से किशोर कुमार की आवाज़ में।

तो चलिए कोलकाता के आज के मौसम का हाल चाल जान लेते हैं। अलीपुर मौसम विभाग के खबर के हिसाब से आज दोपहर के वक्त या शाम के वक्त हल्के बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश। और बात करेंगे पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 0.6 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान रहा 24.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अधिकतम नमी रही 96% और न्यूनतम नमी रही 68%। और ऐसा बताया जा रहा है कि मॉनसून की वापसी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए आने वाले दिनों में कोलकाता और आसपास के इलाकों में बारिश या गरज के साथ हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना बताई जा सकती है। ऐसे में बाहर निकल रहे तो मौसम का ताज़ा फोरकास्ट एक बार ज़रूर देख लें। खासकर दोपहर के समय ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी वास्तविक तापमान से ज़्यादा महसूस हो सकती है, यानी कि सेप्टेम्बर का ये दौर कोलकाता में बारिश और उमस दोनों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अब सीधे चलेंगे हम स्पोर्ट्स की कुछ खबरों की ओर। जी, अब स्पोर्ट्स की एक शानदार खबर ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराया और इसके साथ ही

भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार वुमेन्स एशिया कप जीतने की उपलब्धि भी हासिल कर ली। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम ने दबाव वाले मुकाबलों में भी बेहतरीन खेल दिखाया। इस टूर्नामेंट में शेफाली शर्मा का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में रहा, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इससे टीम के लगातार मजबूत होते प्रदर्शन का पता भी चलता है। मैदान पर खिलाड़ियों की मेहनत, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क ने एक बार फिर देश के क्रिकेट फैंस को मनाने का मौका भी दिया है। और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हुए एशियन गेम्स की तरफ चलते हैं। 19 सितंबर से जापान के आईची नागुआ में एशियन गेम्स 2026 शुरू होने जा रहा है। भारत के खिलाड़ी अलग अलग स्पोर्ट्स में देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। इस बार एशियन गेम्स में 43 स्पोर्ट्स शामिल हैं और सैकड़ों मेडल इवेंट्स होंगे। भारत की नजर एथलेटिक्स, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी और कई दूसरे खेलों में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी। एशियन गेम्स खिलाड़ियों के लिए सिर्फ मेडल जीतने का मौका ही नहीं होते बल्कि ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल की बड़ी कॉम्पिटिशन से पहले अपनी तैयारी परखने का भी अहम मंच होता है ये। अब जैसे जैसे ओपनिंग सेरेमनी करीब आ रही है, भारतीय एथलीट्स और स्पोर्ट्स फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। देश को उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस के साथ यादगार पल देंगे हमें। फिलहाल खबरों का सिलसिला बस अभी यहीं तक। आगे बढ़ते हुए शमशाद बेगम की आवाज में सुन लेते हैं ये बड़ा ही जबरदस्त गाना और उसके बाद चलेंगे आज के इतिहास की ओर।

तो चलेंगे, जैसा कि बताया था कि आज के इतिहास की ओर, 15 सितंबर के इतिहास की ओर, पर उससे पहले एक विशेष सूचना देना चाहूंगी मैं आप सभी को। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल

अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7012 से में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान भी किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों के से पूर्व प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्यूरो का उल्लेख हो आवश्यक होना है। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in उसके पूर्व gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालतों में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332201205 0332201206120332201205 00 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना बेहद जरूरी है। तो ये थी विशेष सूचना और आगे बढ़ते हुए चलते हैं इतिहास की ओर। और इतिहास की शुरुआत करते हैं 1959 से, यानी कि 15 सितंबर 1959 दिल्ली की एक छोटी सी छत पर लगा एंटीना और यूनेस्को की मदद से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयोग। किसी ने सोचा भी नहीं था कि टीवी का ये छोटा सा डब्बा आने वाले समय में हर भारतीय घर की बैठक को सबसे चहेता सदस्य बनेगा। शुरुआत में ये कोई चमक धमक वाला टीवी चैनल नहीं था। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आधे आधे घंटे की शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाए जाते। लोग दूरदर्शन के उस नीले गोल लोगो और उसकी सुरीली सिग्नेचर ट्यून में एक ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने पूरा का पूरा गांव मानो उभर पड़ता। चित्रहार के गानों पर झूमना हो, रामायण और महाभारत के वक्त सड़कों का सन्नाटा हो या बुनियाद हम लोग जैसे धारावाहिकों का अपनापन, दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि पूरे भारत को एक धागे में पिरोने वाला एहसास बन गया। आज भी जब वो सिग्नेचर ट्यून कानों में पड़ती है तो 90 के दशक की वो मीठी यादें और बचपन का भोलापन आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। युद्ध में पहली बार टैंक का इस्तेमाल 1916 में हुआ था, इस बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले चलिए सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

बातें हो रही थी भाई इतिहास की, आज के दिन की 15 सितंबर 1916 की ओर अब चलेंगे हम। जी हाँ, 15 सितंबर 1916 का दिन प्रथम विश्व युद्ध का मैदान और फ्रांस की सेमो नदी का किनारा। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, बारूद का धुआं और खंदकों में छिपे सहमे हुए सैनिक। तभी जमीन से एक अजीब सी गड़गड़ाहट पैदा हुई और लोहे का एक विशालकाय राक्षस धुएं को चीरता हुआ आगे बढ़ा। ये पहली बार था जब दुनिया ने युद्ध के मैदान में बख्तरबंद टैंक का खौफनाक रूप देखा। ब्रिटिश सेना द्वारा गुप्त से रूप से विकसित किए गए इन शुरुआती टैंकों ने को मार्क्स 1 नाम दिया गया था। उस समय मशीन गन की गोलियों और कंटीले तारों को पार करना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन ये लोहे की मशीन बिना रुके दुश्मनों के बंकरों को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। उस दिन की इस घटना ने हमेशा के लिए युद्ध लड़ने के तरीकों को बदल कर रख दिया। युद्ध की रणनीतियों में एक नया अध्याय जुड़ चुका था और थल सेना की ताकत का पूरा पैमाना भी बदल गया था। वहीं 1971 में आज ही के दिन हुई थी ग्रीन पीस की स्थापना। जी हाँ, आज ही के दिन कड़ाके की ठंड और अलास्का का तूफानी समंदर। एक छोटी सी पुरानी मछली पकड़ने वाला नाव पर सवार कुछ मुट्ठी भर पर्यावरण प्रेमी और पत्रकार एक बहुत बड़े मिशन पर निकले थे। मकसद था अमेरिका द्वारा आम चितका द्वीप पर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण को रोकना। वे जानते थे कि ताकत के आगे उनकी नाव बहुत छोटी है, लेकिन उनका हौसला अटूट था। इसी एक निडर कदम के साथ जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन ग्रीन पीस का। उनकी वो पहली यात्रा भले ही परीक्षण को पूरी तरह रोक नहीं सकी, लेकिन उसने पूरी दुनिया का ध्यान जरूर खींच लिया। लोगों को आवाज उठानी ही होगी अगर धरती की खूबसूरती और धरती को बचानी हो। आज ग्रीन पीस जंगलों की कटाई को रोकने से लेकर महासागरों की सुरक्षा और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया के कोने कोने में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक हो तो कुछ सरफिरे लोग भी पूरी दुनिया में बदलाव की क्रांति ला सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे भी, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, बीती न बिताए रहना।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: जी हाँ, जिन दोस्तों ने अभी भी 100.1 FM गोल्ड पर ट्यून इन किया, बता दूं कि आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह आपकी दोस्त पापिया के साथ। और बात हो रही थी आज के दिन यानी 15 सितंबर के दिन के इतिहास के बारे में। चलते हैं अब 1948 की ओर, जब 15 सितंबर 1948 का वो ऐतिहासिक सुबह जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और समंदर की लहरों पर एक नया सवेरा तैर रहा था। नीले समंदर को चीरता हुआ INS दिल्ली पहली बार भारत के तट पर पहुंचा, जब तो हर भारतीय की का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं था, ये आज़ाद भारत की नौसेना के एक नए युग की शंखनाद था। पहले इस युद्धपोत को ब्रिटिश नौसेना के HMS Aegis के नाम से जाना जाता था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी वीरता के झंडे गाड़े। आज़ादी के बाद जब यह भारत को मिला और इसका नाम INS रखा गया, तो हमारी समुद्री सरहदों का पहला सबसे शक्तिशाली पहरेदार बना। देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद जहाज पर कदम रखा, इसका स्वागत किया। 1980 के दशक तक इस महान युद्धपोत ने भारतीय नौसेना की शान बढ़ाए रखी और भारत के समंदर तक सिकंदर बनने की नींव भी रखी। वहीं 15 सितंबर 1876 को हुगली के एक छोटे से गांव में जन्मे थे साहित्यकार शरणचंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने अपनी कलम से भारतीय साहित्य को वो गहराई दी जिसकी गूंज आज भी हर पाठक के दिल में सुनाई देता है। उन्होंने समाज की कुरीतियों, मानवीय संवेदना और औरतों के दर्द को इतनी सादगी और शिद्दत से पन्नों पर उतारा कि उनके लिखी हर कहानी अमर हो गई। देवदास का अधूरा प्यार, चरित्रहीन का सामाजिक ताना बाना, श्रीकांत का भावुक सफर, शरद चंद्र की रचनाएं हर पीढ़ी के पाठकों को अपने साथ बहा ले जाती है। उनकी कहानियों पर बनी फिल्मों और नाटकों ने न जाने कितने लोगों की आंखें नम की हैं। वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि इतनी इंसानी जज्बातों के सबसे बड़े पारखी थे, जिनकी लिखी बातें आज भी उतनी ही तरोताजा महसूस होती हैं।

वहीं 15 सितंबर 1890 को इंग्लैंड में जन्मी थी आगाथा क्रिस्टी, जिन्होंने रहस्य और रोमांच की एक ऐसी दुनिया रची जिसके तिलिस्म से आज तक पाठक बाहर नहीं निकल पाए। क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से मशहूर आगाथा अपनी तीखी सोच, अद्भुत प्लॉट्स के दम पर जासूसी साहित्य का नक्शा ही बदल दिया। उनके गड़े हुए किरदार हरक्यूल पोयरो, मिस पापल आज भी हर सस्पेंस प्रेमी की पसंदीदा जासूस है।

वर नन और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस जैसे उपन्यासों में जिस तरह वे आखिरी पन्नों तक कातिल का रास छुपा कर रखती हैं, उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत थी। शेक्सपियर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका के रूप में एगाथा क्रिस्टी की रचनाएं आज भी हर दिल में उत्सुकता और रोमांच का नया तूफान खड़ा कर देती है। तो ये था दोस्तों आज का इतिहास, और इसके बाद सीधे चलेंगे आज के दिन की ओर। क्यों है आज का दिन इतना खास हमारे लिए? फिलहाल उससे पहले बात करेंगे, तो बिल्कुल पहले उससे पहले गाना सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में।

तो चलते हैं आज के दिन के बारे में बात करते हैं, क्यों है आज का दिन इतना खास। दोस्तों आज 15 सितंबर है और ये तारीख अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं मना रहे हैं, बल्कि उन लोगों को सलाम भी कर रहे हैं जो अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने हुनर से हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जी हाँ, आज है राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, और इस दिन का रिश्ता जुड़ा है भारत के एक ऐसे महा

व्यक्तित्व से जिनका नाम लेते ही मेहनत, अनुशासन, दूरदर्शिता और देश के विकास की तस्वीर हमारे सामने आती है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मुद्देनहल्ली में उनका जन्म हुआ था। आगे चलकर उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने ज्ञान को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इंजीनियरिंग को देश की समस्याओं का समाधान निकालने का माध्यम भी बनाया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, आज हमारे पास कंप्यूटर है, आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा है, अत्याधुनिक मशीनें हैं, लेकिन विश्वेश्वरैया जी अपने समय में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उनके बावजूद उन्होंने पानी के प्रबंधन, सिंचाई, बांधों और बुनियादी ढांचों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। उनके नाम का एक बड़ा उदाहरण है मैसूर का कृष्णराज सागर बांध, जिसे कावेरी नदी पर बनाया गया। उस समय यह परियोजना बेहद महत्वाकांक्षी थी। इसका उद्देश्य सिर्फ बांध बनाना नहीं था, बल्कि पानी का बेहतर उपयोग करना, सिंचाई को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन में सुधार लाना भी था। यही तो एक अच्छे इंजीनियर की असली पहचान होती है। वो सिर्फ मशीन, पुल या इमारत नहीं देखता, वो उसके पीछे की जरूरत को समझता है। वो सोचता है कि इस तकनीक से लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। और विश्वेश्वरैया जी की सोच इस मायने में बहुत आगे की थी। उनके जीवन से जुड़ी एक और बात बहुत प्रेरणादायक है, उनके लिए समय और अनुशासन बहुत मायने रखता था। काम के प्रति उनकी गंभीरता और जिम्मेदारी ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सीखने, काम करने और देश के विकास में योगदान देने में लगा दी। इसी योगदान के सम्मान में 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब सवाल ये जरूर हो रहा होगा आपके दिमाग में कि 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म विश्वेश्वरैया जी की जन्मतिथि है। उनके जन्मदिन को देश के इंजीनियरिंग समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं हमारा अगला गाना फिल्म गाइड से।

दोस्तों आज है 15 सितंबर और आज की तारीख हमें एक ऐसी चीज की याद दिलाती है जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर किसी देश के भविष्य तक दिखाई देता है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? चुनाव, वोट, सरकार, संसद, है ना। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र की कहानी सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की आवाज का सम्मान, अपनी बात कहने की आजादी, दूसरों की बात सुनने की समझ और अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाने का फैसला किया ताकि दुनिया भर में लोकतंत्र के मूल्य और सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। और अगर हम देश की भारत की बात करें तो लोकतंत्र हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन इन तमाम विविधताओं के बीच लोगों को अपनी बात रखने और अपनी पसंद की प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिलता है। जरा सोचिए, एक ही देश में रहने वाले दो लोगों की पसंद अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी राय अलग हो सकती है। लोकतंत्र हमें यही सिखाता है कि अलग राय होना कोई समस्या नहीं। असली बात यह है कि हम अपनी राय रखते हुए दूसरों की राय का भी सम्मान करें। यानी लोकतंत्र सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं देता, वो सुनने की जिम्मेदारी भी देता है। और दोस्तों लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें हर नागरिक की भूमिका होती है। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा पद संभाल रहे हों या राजनीति में हो। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों को समझना, सही जानकारी हासिल करना, मतदान करना, कानून का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना और समाज में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि देश चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, लेकिन असल में लोकतंत्र सरकार और नागरिकों दोनों की साझी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह रहे, कानून और संस्थाओं का सम्मान करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। वहीं नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहे, सवाल पूछे, सही जानकारी हासिल कर अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। और आज के डिजिटल दौर में ये जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे हाथ में मोबाइल है और कुछ ही सेकंड में कोई खबर, तस्वीर या वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन हर वायरल चीज सच हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका ये भी है कि हम किसी भी जानकारी को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। अपनी राय जरूर बनाएं, लेकिन सही जानकारी के आधार पर, क्योंकि एक जागरूक नागरिक सिर्फ अपने लिए फैसला नहीं लेता, वो फैसला का असर जो होता है वो पूरे समाज पर हो सकता है। और हाँ, लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं है कि किसी की राय एक जैसी होनी चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसमें भी है कि अलग अलग आवाजें एक साथ मौजूद

वो तो है सके। आप किसी की बात से सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना, बातचीत जारी रखना और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका देना, यही लोकतांत्रिक भावना है। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर आइए लोकतंत्र को सिर्फ एक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जीवन पद्धति के रूप में समझें, अपने अधिकार जानें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, सवाल पूछें, यही जानकारी हासिल करें और सबसे जरूरी बात, दूसरे की आवाज का भी सम्मान करें, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं होता, लोकतंत्र हमारे घरों में भी होता है जब हम सबकी बात सुनते हैं। तो ये था आज के दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली आज। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 7:55 और 22 सेकंड एग्जैक्टली, और अब ऑलमोस्ट सुहानी सुबह प्रोग्राम के अंत तक हम पहुंच चुके हैं, और जाते जाते एक प्यारा सा गाना ना सुने ये कैसे हो सकता है। किशोर कुमार की आवाज़ में हम सुनेंगे फूलों के रंग से, जी हाँ, प्रेम पुजारी फिल्म से है ये गाना, और इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लूंगी आप सभी से विदा, मिलूंगी ठीक 10:02 पर लेकर नॉनस्टॉप गपशप FM रेनबो पर। ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारी चर्चाएं होंगी, फोन कॉल्स पे बातें होंगी और नए नए चीज़ें भी हम सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तब तक के लिए बने रहिए, उसके बाद फिर 11:10 पर FM गोल्ड पर वापस आना है, बात करेंगे अमृता सिंह पर। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा, सुहानी सुबह आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और दिन सुहानी सुबह में वापस, पर उससे पहले सुन लेंगे किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, और अब बने रहिएगा 100.1 FM गोल पर, क्योंकि थोड़ी ही देर में है अगला प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधान का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल है, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य

0: सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर उड़ीसा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि नुआखाई केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं है, बल्कि सामुदायिक भोज और मित्रों तथा परिजनों के मिलन के माध्यम से सामाजिक और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a Gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. Chief Justice of India, Justice Suryakant,

0: हमले रोकने पर सहमत। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
1: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल है, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है जो 3 दिन तक चलेगी।
3: सेमिकॉन इंडिया वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। इस बार सम्मेलन में 600 से अधिक पार्टनर्स, 300 से ज्यादा विदेशी कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत के 12 राज्यों और 6 देशों के विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में आमंत्रित करना है ताकि वे यहां कर निवेश करें, अपनी तकनीक लाएं और भारत को कंप्यूटर चिप बनाने का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाएं। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में नए स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां मिलकर बिजनेस के नए मौके तलाशेंगी। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सेमीकंडक्टर निर्माण के मामले में भारत दुनिया भर में एक भरोसेमंद देश के रूप में उभरेगा। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमरीका

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने की शर्तों पर सहमत हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस समझौते को लागू कराने या इसके दायरे से जुड़ी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ये भी नहीं बताया गया है कि क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यदि सहयोगी देश यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला न करने की उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सके तो यूक्रेन भी रूसी क्षेत्र पर हमले रोकने के लिए तैयार है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने विदेशी विद्यार्थियों संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रह रहे लोगों और विदेशी मीडिया कर्मियों के देश में रहने की अवधि सीमित करने से जुड़े ट्रंप प्रशासन के नियम पर रोक लगा दी है। मैसाचुसेट्स के न्यायाधीश एफ डेनिस सेलोर द फोर्थ ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 705 के अंतर्गत नियम पर रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को इसके लागू होने से ठीक एक दिन पहले स्वीकार कर लिया। इस नियम के तहत एफ और जे श्रेणी के गैर अप्रवासियों को उनके अकादमिक या संपर्क कार्यक्रमों की अवधि के लिए प्रवेश दिया जाएगा जो अधिकतम 4 वर्षों तक सीमित होगा। इसके बाद देश छोड़ने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने एक संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे यूनाइटेड किंगडम के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कल वेल्स की राजधानी कार्डिफ में बैठक में संयुक्त समझौते पर आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर बल दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर भारत 1-0 से आगे है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। भारतीय टीम 5 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 5th edition of Semicon India 2026 in New Delhi on Thursday. US President Donald Trump says Russia and Ukraine agreed to stop attacking each other's energy sites.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री

0: भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Canada have begun the fourth round of negotiations for the proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA, in New Delhi, as both sides seek to boost bilateral trade to $50 billion by 2030. The five-day talks, which began yesterday, will continue until September 18 and cover key areas including trade in goods and services, rules of origin and technical trade barriers, among others. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The Department of Rural Development, DORD, and the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, have signed a Memorandum of Understanding to expand pension coverage.

0: नमस्कार दोस्तों, 100.1 FM गोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 11:10 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम।
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
0: तो आज के महफिल में यादों के उस दौर की ओर लौटने का मन है जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कुछ नए चेहरे आए और देखते ही देखते दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना गए। इन्हीं चेहरों में से एक नाम था अमृता सिंह का। 80 के दशक में उनकी चंचलता, उनकी बेबाक अदायगी और पर्दे पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें बहुत कम समय में लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन अमृता सिंह की कहानी केवल

एक सफल अभिनेत्री बनने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे कलाकार की यात्रा है जिसने अपने करियर में कई रंग देखे, अपने जीवन में एक लंबा विराम लिया और जब वापसी की तो अपने लिए एक बिल्कुल अलग तरह की पहचान बनाई।

0: तो इस गाने के साथ ही हमारे पहले जो लिसनर हैं वो आ चुके हैं, मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर अपनी फरियाद लेकर। देखते हैं कौन से गाने की फरमाइश लेके आए हैं वो, पहले चलिए उनसे बात कर लेते हैं फटाफट। हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लो आ गई उनकी याद में।
1: प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसा है सब हाल चाल, कैसा आपका घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी आपके दुआ से और श्रोताओं के दुआ से सब सही है।
0: ओके गुड,
1: आपकी सकुशलता कामना करता हूँ।
0: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर परिवार में भी सब ठीक है।
1: जी धन्यवाद दीदी। तो अमृता सिंह जी पर आप प्रोग्राम कर रही हैं। अमृता सिंह जी एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं और मुझे आप सुना दीजिए मर्द पिक्चर का विल यू मैरी मी।
0: ठीक है, और उनकी कौन सी फिल्म सबको पसंद, सबसे ज्यादा पसंद है आपको? वैसे
1: सबसे अच्छा हमको लगा था चमेली की शादी।
0: ओके अच्छा,
1: हाँ। कॉमेडियन पिक्चर था,
0: काफी अच्छी पिक्चर थी जी।
1: और विशेषकर अमजद खान जी का रोल बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा उसमें अच्छा।
0: जी ठीक है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ विल यू मैरी मी, आशा भोसले और अनु मलिक की आवाज में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू। अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ मस्त एकदम रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे।
1: एकदम दीदी, ओके
0: चलिए बाय। तो दोस्तों ये थे पारस पंडित चुचरा हुगली से और अमृता सिंह के बारे में बात कर रहे थे हम। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को हुआ था। फिल्मी दुनिया में उनकी शुरुआत वर्ष 1983 में राहुल रवेल की फिल्म बेताब से हुई। ये फिल्म उनके लिए कई मायनों में खास थी क्योंकि इसी फिल्म से सनी देओल ने भी हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी थी और संगीत आर डी बर्मन का था। बेताब की सफलता ने अमृता सिंह को रातों रात एक पहचाना हुआ नाम बना दिया। उस समय वो बहुत युवा थी लेकिन कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास और सहजता दर्शकों को बहुत पसंद आई। बेताब की सफलता के बाद अमृता सिंह के पास फिल्मों की कमी नहीं रही। उन्होंने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई और उस समय के लगभग सभी बड़ी अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी स्क्रीन उपस्थिति में एक खास तरह की ऊर्जा थी। वो केवल खूबसूरत दिखाई देने वाली नायिका नहीं थी बल्कि संवाद बोलने और भावनाओं को व्यक्त करने का उनका अपना अंदाज था। 80 के दशक हिंदी सिनेमा में मसाला फिल्मों का भी दौर था। रोमांस,

एक्शन कॉमेडी तथा पारिवारिक कहानियों के बीच अमृता सिंह ने अपनी अलग पहचान भी बनाई। 1985 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फिल्म बड़ी व्यावसायिक सफलता बनी और अमृता सिंह को लोकप्रियता और बढ़ी, और इसके साथ ही उनके करियर में एक ऐसा दौर आया जिसमें एक के बाद एक अलग अलग तरह की फिल्में आती रही। लेकिन अगर उनकी अभिनय क्षमता को समझना हो तो केवल बड़ी व्यावसायिक फिल्मों को देखना काफ़ी नहीं है, उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें उनके अभिनय की का अलग रंग ही दिखाई दिया। फिलहाल मर्द फिल्म से सुन लेते हैं रिक्वेस्ट किया हुआ गाना विल यू मैरी मी, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लुआ गेम की याद में।
1: नमस्कार जी, मैं राणा हालदार बोल रहा हूँ।
0: जी राणा जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: सब बढ़िया, कुछ
0: चलिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप?
1: हाँ, मैं अमृता सिंह जी का प्रोग्राम चल रहा है आपके यहाँ, तो अभी मैं फेवरेट गाना था बेटा का, वो तो हो चुका है।
0: बिल्कुल फर्स्ट में बजा दिया आपका फेवरेट गाना हमने।
1: हाँ, तो अभी आप अपनी तरफ से सुना लीजिए कोई।
0: ठीक है,
1: और मेरा पहली बार कॉल लगा, थोड़ा नर्वस तो हो रहा हूँ मैं भी।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नर्वस होने की इस बात नहीं है, बस आप ही का, आप ही के दोस्त हैं हम।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
0: ठीक है, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, 1986 में आई थी चमेली की शादी। बसु चटर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म अपनी सरल कहानी, हास्य और सामाजिक व्यंग के लिए आज भी याद की जाती है। अमृता सिंह ने इसमें चमेली का किरदार निभाया। चमेली कोई पारंपरिक हिंदी फिल्म की नायिका नहीं थी, वो तेज तरार थी, अपनी बात कहती थी, अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट थी। अमृता सिंह ने इस किरदार को जिस सहजता से निभाया, वो उनकी कॉमेडी टाइमिंग और संवाद अदायगी दोनों को सामने लाता है। अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई। चमेली की शादी की खासियत ये थी कि फिल्म ने जाति और सामाजिक बंधनों जैसे गंभीर विषय को बहुत ही हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में सामने लाया। बसु चटर्जी की फिल्मों की यही खूबी थी कि वो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में बड़े सामाजिक सवाल तलाश करते थे। अमृता सिंह ने चमेली के किरदार में उस सहजता को पूरी तरह अपनाया और शायद यही वजह है कि आज भी फिल्म की चर्चा होती है। इस वर्ष अमृता सिंह महेश भट्ट की फिल्म नाम में भी दिखाई दी थी। नाम एक गंभीर और भावनात्मक फिल्म थी और इसमें उनके अभिनय की अलग पक्ष भी रखा गया था। फिलहाल इस बारे में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, पर चमेली की शादी की बात हो रही है, उसका टाइटल ट्रैक न सुने ये कैसे हो सकता है ना? तो चलिए सुन लेते हैं इसका टाइटल ट्रैक।

तो बात हो रही थी दोस्तों कि जिस साल चमेली की शादी फिल्म आई थी उसी साल महेश भट्ट की फिल्म नाम में भी वो दिखाई दी। नाम एक गंभीर और भावनात्मक फिल्म थी जिसमें उनके अभिनय का एक अलग पक्ष सामने आया। इसी फिल्म से जुड़ा गीत चिट्ठी आई है आज भी भारतीय सिनेमा के उन गीतों में गिना जाता है जिन्हें घर से दूर रहने वाले लोगों की भावनाओं से जोड़ कर देखा जाता है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत आनंद बख्शी ने लिखा। पंकज उदास की आवाज ने इस गीत को एक ऐसी पहचान दी जो फिल्म के आगे से आगे निकलकर लोगों की निजी यादों का हिस्सा बन गई। अमृता सिंह का करियर लगातार आगे बढ़ा। उन्होंने खुद गर्ज, ठिकाना, वारिस और कई अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर की एक महत्वपूर्ण वो 1993 में आया जब फिल्म आईना में उन्हें रोमा का किरदार निभाया। फिल्म में जूही चावला और जैकी श्रॉफ भी थे और अमृता सिंह की भूमिका कहानी के लिए महत्वपूर्ण थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इस उपलब्धि को इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये दिखाती थी कि वो सिर्फ लोकप्रिय नायिका ही नहीं बल्कि गंभीर और प्रभावशाली अभिनय करने की क्षमता भी रखती थी। फिलहाल तो चलिए बैक टू बैक दो गाने सुन लेते हैं, नाम उसके बाद दूसरा गाना। तो चलिए, पर उससे पहले एक विशेष सूचना। नॉर्थ दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और मालदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए एक विशेष सूचना। आने वाले 2 से 3 घंटों में हल्के से मध्यम गरज के साथ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की गुंजाइश बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो आप जब भी निकले बाहर जाएं तो एकदम सावधानी बरतें, पूरी तैयारी के साथ बाहर जाएं और अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए चलिए सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

आईना के बाद अमृता सिंह ने फिल्मों से एक लंबा विराम लिया। हिंदी सिनेमा में ये वो समय था जब उनका करियर अच्छी तरह स्थापित था, लेकिन उनके पर्दे से दूर होना अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन जीवन में हर कलाकार का सफर हमेशा कैमरे के सामने नहीं चलता। कुछ समय कलाकार अपने परिवार, अपने प्राथमिकता और अपने जीवन के दूसरे पहलुओं को भी समय देता है। अमृता सिंह के जीवन में भी ऐसा ही एक लंबा अंतराल आया और फिर कई वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा अभिनय की दुनिया में वापसी की, लेकिन उनकी वापसी का अंदाज दिलचस्प था। वो दोबारा वही युवा नायिका बनने की कोशिश करती हुई नहीं लौटी। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी भूमिका चुनी जो उनकी उम्र और अनुभव के अनुरूप थी और जिसमें अभिनय की गुंजाइश भी थी। वर्ष 2002 में फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद में उन्होंने भगत सिंह की मां विद्यावती का किरदार निभाया। ये उनके लिए एक बिल्कुल अलग तरह की भूमिका थी और इसने ये संकेत दे दिया कि उनकी दूसरी पारी पुराने करियर की पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों के साथ टेलीविजन पर भी काम किया। उस दौर में कलयुग जैसी फिल्मों में भी वो दिखाई दी। धीरे धीरे दर्शकों ने अमृता सिंह को एक नई भूमिका में स्वीकार करना शुरू कर दिया। वो केवल नायिकाएं नहीं थी, वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कहानी में एक मजबूत चरित्र लेकर आती थी। उनकी दूसरी पारी की खूबसूरती ये थी कि स्क्रीन पर आने के लिए फिल्म की सबसे बड़ी स्टार होने की आवश्यकता नहीं थी। एक अच्छी भूमिका मिल जाए तो उसमें वो अपनी छाप छोड़ सकती थी। शूट आउट एट लोखंडवाला से औरंगजेब और फिर टू स्टेट्स तक उनके किरदारों में ये बदलाव साफ दिखाई देता था। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं शहीद फिल्म का ये गाना और उसके बाद फिर आदत कलयुग फिल्म से।

दोस्तों, यहाँ अमृता सिंह के करियर की एक खूबसूरत बात भी सामने आती है। जिस अभिनेत्री को 80 के दशक की पीढ़ी बेताब और मर्द से पहचानती थी, उसी अभिनेत्री ने एक नई पीढ़ी में टू स्टेज जैसी फिल्मों से पहचानने लगी। यानी उनके अभिनय की यात्रा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही थी। इसके बाद हिंदी मीडियम और बदला जैसे फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। खासतौर पर बदला जैसे रहस्य प्रधान फिल्म में उनकी मौजूदगी ये बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपने किरदारों को और ज्यादा विविध बना दिया।

बेताब से शुरू हुई वो यात्रा आज भी दर्शकों की यादों में मौजूद है। चमेली की शादी की चुलमुली चमेली से लेकर आईना की गंभीर भूमिका और दोस्ती टू स्टेट्स की कावेरी अम्मा तक, अमृता सिंह ने हमें कई ऐसे किरदार दिए जिन्हें अलग अलग पीढ़ियां अपने अपने तरीके से याद करती हैं। और शायद इसी वजह से जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो मन में कोई एक फिल्म नहीं आती, एक पूरी फिल्मी यात्रा सामने आती है। वो 80 का दशक, वो पुराने गीत, वो सिनेमाघर और पर्दे पर दिखाई देती एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी आवाज़, अंदाज और अभिनय ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। समय बदलता गया, सिनेमा बदलता गया, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती। बस कोई पुराना गीत बजता है, कोई पुरानी फिल्म सामने आती है और अचानक उनकी याद आ जाती है। फिलहाल मेरा भी जाने का समय हो गया है, लो आ गई उनकी याद में। आज अमृता सिंह के बारे में बातें हो रही थी, उनकी फिल्मी करियर के बारे में बातें हो रही थी, और फिलहाल जो समय का पहिया है कह रहा है कि भाई अब ख़त्म करना चाहिए हमारा आज का जो पूरी बातचीत है, आज की पूरी बातचीत। ये सारी अच्छे अच्छे गाने सुने हमने और फिलहाल जाने का वक्त है, तो बने रहिए, आप कहीं मत जाइए। 100.1 FM गोल्ड पर थोड़ी देर में सुनेंगे अगला कार्यक्रम भी। मैं जाते जाते सुनवा दे जा रही हूँ आपको हिंदी मीडियम का ये गाना, तनिष्का सांघवी की आवाज़ में ये गाने सुनिए, इन्जॉय कीजिए और बने रहिए। मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ, तब तक के लिए 100.1 FM गोल्ड है ये।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं।

0: समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: প্রখ্যাত ভারতীয় প্রকৌশলী ভারতরত্ন মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরাইয়ের অবদানকে স্মরণ করতে এবং দেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকাকে সম্মান জানাতে তার জন্মবার্ষিকীতে এই দিনটি পালন করা হয়। সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এম বিশ্বেশ্বরাইয়া ছিলেন এক প্রকৌশলী প্রতিভা, যার জাতি গঠনের দূরদর্শী চিন্তা আজও নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে।
1: মহান ইঞ্জিনিয়ার্স কি হামারি বিরাসত মে এক এসা রত্ন ভি হামে মিলা জিসকে কার্য আজ ভি লোগো কো অচম্বিত কর রহে হ্যায় অর ভে থে ভারত রত্ন ডক্টর এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। উনি কি ইয়াদ মে 15 সিতম্বর কো ইঞ্জিনিয়ার্স ডে কে রূপ মে মানায়া জাতা হ্যায়। উনকে পদ চিহ্নো পর চলতে হুয়ে হামারে দেশ কে ইঞ্জিনিয়ার পুরে বিশ্ব মে অপনি অলগ পহচান বনা চুকে। মে ইস অবসর পর সবি ইঞ্জিনিয়ারো কো উনকি নির্মাণ শক্তি কো আদরপূর্বক নমন করতা।
0: বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন 7 ধাপে সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম ধাপে নির্বাচন 12 নভেম্বর হতে পারে। ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ একথা জানান। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রথম ধাপে ভোট হবে চলতি বছরের 12 নভেম্বর, দ্বিতীয় ধাপে 13 ডিসেম্বর এবং তৃতীয় ধাপে 30 ডিসেম্বর। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্বে প্রাথমিক তারিখগুলি যথাক্রমে পরের বছরের 17 জানুয়ারি, 4 ফেব্রুয়ারি, 22 এপ্রিল এবং 27 মে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো সুসংগঠিত নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিশন আগামী 23, 24 ও 25 সেপ্টেম্বর সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। প্রতিটি দলের 2 জন করে প্রতিনিধি ওই আলোচনায় থাকতে পারবেন। পুরুষদের ক্রিকেটে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে আজ ভারত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যে 7:30। রবিবার সিরিজের প্রথম ম্যাচে 7 উইকেটে জিতে ভারত 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচটি বৃহস্পতিবার একই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। পশ্চিমবঙ্গের 2 বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় প্রথম 1 মাসে পশ্চিমবঙ্গে 50,000-এর বেশি মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। ভারতের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম দূরদর্শনের 67তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনুন বেলা 1:30।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই কনকলতা। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
3: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, ADITI हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the national capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
3: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं।
5: The reforms witnessed in the defense sector over the past few years are unprecedented and several game-changing decisions have been taken. These include the positive indigenization list, the Make in India initiative, IDEX, Aditi and the decision to allocate 25% of the defense research and development budget to the private sector.
3: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए हैं।
4: The defense minister said the partnership between DRDO and industry can make India a global hub for defense manufacturing. Mr. Singh said over the years DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence. Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has underlined India's commitment to embedding circular economy principles into its sustainable development framework. Addressing the inaugural session of the 10th edition of the World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar, Gujarat today, the minister stressed that India has modernized its deep-rooted ancient cultural practices of reuse, repair and conservation values into contemporary policies under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
6: Circularity must extend it beyond waste management. It calls for embedding circular economy principles into the development and maintenance of sustainable and resilient infrastructure. For India, this is an important movement because our BRICS chairship has placed circular economy alongside sustainable lifestyles.
4: National Engineers Day is being celebrated today to honor the birth anniversary of Mokshagundam Vishveshwaraya, one of India's greatest engineers. The day is celebrated to remember Vishveshwaraya's contributions and honor the role of engineers in the nation's growth. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to

0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाव बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

0: ईपीआर विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
1: अंडर द ईपीआर मैकेनिज्म,
2: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
3: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वर

0: इंडिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
2: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: EDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां भी अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने

से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 में ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर एआई तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहले चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली

0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। द एक्सटर्नल अफेयर्स

0: যে 35 মিনিটে।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: आपकी आरजी दोस्त सुलक्षणा पर्वत आप सभी श्रोताओं का 100.1 एफएम गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता पर बहुत खास कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में स्वागत कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में उपयोगी जानकारी शेयर करूंगी। सुकन्या समृद्धि योजना, SSY भी कहते हैं इन शॉर्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई सरकारी बचत योजना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा, योजना क्या है? तो ये 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम है। इसका पैसा बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इस्तेमाल होता है। अभी का ब्याज दर जो है 8.2% सालाना है। ये रेट जनवरी 2024 से अब तक वही है, जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही में भी यही है। ये PPF से भी ज्यादा है। कौन खोल सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, माता पिता या गार्जियन खोल सकते हैं एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट। एक परिवार में मैक्सिमम 2 बेटियों का अकाउंट खुल सकता है, तीसरी का सिर्फ जुड़वा बेटी होने पर। जमा करने के नियम भी हैं, मिनिमम 250 रुपये साल, मैक्सिमम 1.5 लाख साल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पैसे 15 साल तक जमा करने होते हैं, अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है या बेटी की 18 साल के बाद शादी पर बंद कर सकते हैं। अब आती है बात फायदे की। भला फायदे की बात कौन नहीं सुनना चाहे। तो चलिए सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित जो फायदे हैं वो बता दूं। सबसे ज्यादा ब्याज 8.2 जो हर साल जुड़ता है। टैक्स बेनिफिट ईईई जो कैटेगरी है, जमा ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स नहीं लगता है। ATC में 1.5 लाख तक छूट है। पढ़ाई के लिए निकासी, बेटी के 18 साल के बाद 50% पैसे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक SBI PNB वगैरह में खाता जो है खुल सकता है। ये अकाउंट कैसे खोले, ये भी एक सवाल है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पहला बेटी का प्रमाण पत्र, दूसरा माता पिता का आधार, पैन और एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। पोस्ट ऑफिस बैंक में जाकर SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना फॉर्म भरो। 250 रुपये से अकाउंट शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर से भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी बातें मैंने आपसे साझा किया सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित। फिर किसी रोज किसी और योजना के बारे में ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत संबंधी सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28/8/2026 को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 712 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम

बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक, डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 712 के नाम भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी नोट कर ले, adpgcow@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक, डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या नोट कर ले, 0332212050 या दूसरा नंबर नोट करें, 0332212062 या फिर एक तीसरा भी नंबर है, 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों, आप ही के पसंदीदा हिंदी कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स में, चाय और क्लासिक्स लेकर हाजिर है आपकी अपनी आरजे सुलक्षणा पर्वत, जो ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 FM गोल्ड पर। आज शाम प्रोग्राम के आखिर तक आप सभी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान होगी। यूं तो आप कार्यक्रम के शुरुआत से भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जब आप अपने घर या पड़ोस में टेलीविजन से जुड़े अपने खूबसूरत सफर को याद करेंगे तो वाकई में वो लम्हा बहुत ही खुशनुमा होता है, यादगार होता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे पर वो मेकअप करके जाता है ना, खुशियों का मेकअप, जो एक लंबे समय तक हम उसे एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। तो चलिए आगाज करना चाहूंगी इस गीत के साथ कार्यक्रम चायन क्लासिक्स का। आज ये गाना मैंने लिया है फिल्म पराया धन से। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। आनंद बख्शी ने बड़े आनंद के साथ इसे कलमबद्ध किया है और संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।

आज यानी 15 सितंबर दूरदर्शन स्थापना दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि आज ही के दिन 1959 में भारत के राष्ट्रीय प्रसारक यानी दूरदर्शन डीडी की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन का इतिहास और शुरुआत का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में एक छोटे से आकाशवाणी स्टूडियो से इसका उद्घाटन किया था। चलिए पहले आप सब तक एक प्याली चाय पहुंचाती हूं, चाय पीते पीते आगे की बात को जारी रखूंगी। फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म सौतन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, जिसे बड़े खूबसूरती से सावन कुमार टाक और प्रदीप कौशिक ने कलमबद्ध किया है और संगीत का जादू उषा खन्ना की।

जब कार्यक्रम का नाम है चाय एंड क्लासिक्स तो भला मैं म्यूजिकल चाय आप तक कैसे ना पहुंचाती। अब चाय पी के और भी जो है ना मतलब ये शाम और सुहानी लग रही होगी। और अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो शुरुआती दौर था ना दूरदर्शन का, शुरुआत में ये टेलीविजन इंडिया के नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट था। तब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे के लिए शैक्षिक और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जाते थे। फिर 1965 में, इन द ईयर 1965, साल 1965 में दैनिक प्रसारण शुरू हुआ, दूरदर्शन का रोजाना प्रसारण शुरू हुआ और इसी साल पहली बार 5 मिनट का समाचार बुलेटिन भी शुरू किया गया, जिसे देश की पहली न्यूज रीडर प्रतिमा पुरी ने पढ़ा था। 1976 तक ये ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा था, जिसके बाद इसे अलग विभाग बनाया गया। वर्तमान में ये प्रसार भारती के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट है। और ऐसा है दोस्तों कि अब अगला गाना, वैसे मैं बता दूं ये जब टीवी भी आया था ना शुरुआती दौर में, ये मतलब इससे इतना लगाव था, सभी को लगता था जैसे कि कोई अजूबा है, कोई मैजिक बॉक्स है। और इससे ढेर सारी बातें आप मतलब मैं आपसे साझा करूंगी। और टीवी से जुड़े मतलब वो दौर जिन्होंने देखा है रामायण महाभारत का टीवी पर जिन्होंने देखा है, वो तो समझ ही सकते हैं कि वो आलम कैसा होता था, वो समय कैसा होता था, मतलब क्या ही कहें। याद करेंगे तो वही जो मैंने कहा था कि चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी उन दिनों को याद करके। और यही तो खास बात है कि जब हम कोई विशेष दिन मनाते हैं और उससे जुड़ी बातों को साझा करते हैं या याद करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ तरोताज़ा हो जाता है। तो अगला गाना आप सभी के लिए आशा भोसले की आवाज में, फिल्म खूबसूरत से,

80 और 90 का दशक, ये वो दौर था जब दूरदर्शन हर भारतीय घर की जान बन चुका था। रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, शक्तिमान, चित्रहार, मालगुडी डेज, ब्योमकेश बख्शी जैसे धारावाहिकों ने इतिहास रच दिया। रामायण और महाभारत के प्रसारण के समय तो देश की सड़कें तक सूनी हो जाती थी। और क्या बताऊं, ऐसा लगता था ना मानो कि बहुत लोगों के घर पर उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोग थे जिनके घरों पर टीवी हुआ करता था। और मुझे याद है कि खास करके मतलब रामायण महाभारत के समय और रविवार को हिंदी फिल्म एक आती थी, मतलब एक हर सप्ताह में एक हिंदी फिल्म रविवार को, और बुधवार की शाम चित्रहार आधे घंटे के लिए। तो इन समय पर भी ना क्या होता था, आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो चले आते थे, और मतलब उस वक्त जो मिठास होती थी आपके पड़ोसियों के जुबान पर, क्या बताएं, चीनी और गुड़ में भी वो मिठास नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि मतलब वो टीवी नहीं मैजिकल बॉक्स होता था, और देख के इतनी खुशी होती थी कि क्या ही बताएं। हमें भी खुशी होती थी जब ढेर सारे पड़ोसी हमारे घर पर आते थे, तो कहीं ना कहीं लगता था, आज तो कई सारे चैनल हैं, लेकिन उस वक्त भी हर एक इंसान जो देखते रहता था ना, मतलब हर एक के चेहरे पर वो जो खुशी की झलक होती थी, सब लगता था कि अलग अलग, किसी का गुलाबी, किसी का पीला, किसी का नीला, मतलब जो हम लोग देखते थे ना टीवी पर, जैसा इमोशन हम देखते थे कैरेक्टर के चेहरे पर, वही हमारे चेहरे पर भी नजर आता था। अगर वो रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भी आंसू निकल जाते थे, वो खुश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी चहक रहे थे। तो एक ऐसा जो है ना, एक कनेक्शन जुड़ गया था। अरे क्या बताऊं, मतलब

इस गीत को आपने सुना फिल्म यादों की बारात से। आशा भोसले और शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया है और संगीत

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 5:51 और फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 एफएम गोल्ड, यानी कि आपका अपना खरा सोना वाला चैनल। और आज 15 सितंबर को हम हर साल की तरह मना रहे हैं दूरदर्शन डे। और ऐसा है दोस्तों कि बदलते दौर के साथ तालमेल बिठाते हुए सरकार ने सैटेलाइट और डिजिटल युग में कदम रखा। आज डीडी फ्री डिश देश का सबसे बड़ा फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म है डीटीएच। दूरदर्शन दिवस का महत्व और उद्देश्य सूचना और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दूरदर्शन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों तक शिक्षा और सूचना पहुंचाना भी है। इसके कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन और टेली स्कूल जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत और छात्रों को बहुत सशक्त बनाया है। और सांस्कृतिक एकता की बात करूं तो भारत की विविधता लोक कलाओं और संस्कृति को सहेजने और उसे पूरे देश के सामने पेश करने में दूरदर्शन का अतुलनीय योगदान रहा है। विश्वसनीय समाचार, आज के सनसनीखेज मीडिया के दौर में भी दूरदर्शन डीडी न्यूज को अपनी निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए जाना जाता है। तो ऐसा है दोस्तों कि अब जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी उसे हमने लिया है किस फिल्म से, बता दूं? चलिए बता देती हूं, फिल्म का नाम है सनी। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी हाँ जी, समझ तो गए ही होंगे जब सनी फिल्म का नाम बताया तो, क्योंकि इस फिल्म में एक गाना था जो कि दूरदर्शन में उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी। और आपने देखा होगा अमृता सिंह गा रही थी और वहां दूरदर्शन भी दिखाया गया था फिल्म में। तो मैंने सोचा कि आज दूरदर्शन डे पर क्यों ना आपको वो गाना सुना दूं, जाने क्या बात है। कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: ऐसा है दोस्तों कि वापस हाजिर हो जाऊंगी 6:10 पर, क्योंकि 6 बजे से 6:05 तक न्यूज इन हिंदी, 6:05 से 6:10 तक न्यूज इन इंग्लिश, और 6:10 पर वापस हाजिर हो जाऊंगी लेकर चायन क्लासिक्स का पार्ट 2। तो फिलहाल रुक करते हैं दिल्ली केंद्र की ओर, जहां से पहले हिंदी और बाद में अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे हम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया, और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:11 और वादे के मुताबिक आपकी अपनी आरजी सुलक्षणा पर्वत हाजिर है लेकर शायन क्लासिक्स का पार्ट टू खरा सोना वाले चैनल पर यानी कि आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 FM गोल्ड पर। और ऐसा है दोस्तों कि आज दूरदर्शन दिवस मनाया जा रहा है, दूरदर्शन डे। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ज़रूर आप सभी से साझा करना चाहूँगी, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, सही सुना आपने, सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श वाक्य के साथ शुरू हुआ दूरदर्शन आज भी डिजिटल माध्यमों यूट्यूब ऐप्स और सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसी गौरवशाली सफर को याद करने के लिए हर साल 15 सितंबर को दूरदर्शन स्थापना दिवस जो है बेहद गर्व के साथ मनाया जाता है।

आज दूरदर्शन स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में क्यों ना एक कविता सुनाऊं आपको। टेलीविजन का संसार शीर्षक है, कविता कुछ इस तरह है। कमरे के एक कोने में रखा है जादुई संदूक, इसकी नीली चमक पर फिदा है सबका दिल और लुक। खबरें, फिल्में और खेल सब कुछ इसमें आ जाता है, बैठकर पूरा परिवार आनंद इससे पाता है। कभी हंसाए कभी रुलाए, ज्ञान की ये खान है। दुनिया भर की सैर कराए, बढ़ाए देश विदेश का ज्ञान। पर बच्चों रखो थोड़ा ध्यान, ना बनो इसके तुम गुलाम। हद से ज्यादा देखना इसको, बगावत है अपनों के नाम।

6:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम मार्केट मंत्रा, और अभी समय हो चला है 6:25, यानी कि इस बीच 5 मिनट हमारे बीच शेष बचा है। और आपको बता दूं कि आप अगर फिर से मुझे सुनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है 100.1 FM गोल्ड पर आज और संभव तो नहीं हो पाएगा आज के दिन, लेकिन हाँ आपको निराश नहीं करूंगी, आप मुझे सुन सकते हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर, यानी कि 107 FM रेनबो पर। 7:02 से लेकर 8 बजे तक रहूंगी 107 FM रेनबो पर लेकर कार्यक्रम छाया लोग, तो सुनना ना भूलिएगा, जुड़े रहिएगा 7:02 से और जुड़ जाइएगा। और फिलहाल आप सभी के लिए आज की शाम कार्यक्रम चैन क्लासिक्स को विराम देने से पहले

क्यों ना आपको सुनवा दूं फिल्म राजा और रंग से उस गीत को जिसे आप सुनेंगे शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में। बड़े खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने, क्या कहूं, बड़े आनंद के साथ किया है आनंद बख्शी ने कलमबद्ध, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। तो फिरकी वाली गाना सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को, और हमेशा की तरह यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए, और क्या, जुड़े रहिए खरा सोना के साथ, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक

0: market indices declined. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate, WPR, increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ. देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है. इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसल कर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे ही सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points or 1% to close at 74,004. Nifty shed 280 points or 1.2% to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Mid-Cap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small-Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased the initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 26 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9%, and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced, and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर. ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है. हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक एक एक, एक,
1: एक कारण है.
2: कारण है.

0: पहली बात तो है कि जो हमारी जो जो कच्चे तेल की दाम जो है
1: जी.
0: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है. ये कुछ महीने पहले ये 78 70 80 में मंडरा रही थी, अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना. और आप जानते ही हैं कि हमारी जो भारत की जो जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80 से 85% के ऊपर है. तो उससे हमारी जो देश की जो जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है. इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये. और दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो वैश्विक बाजार में पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है, उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है. ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड मतलब जो बॉन्ड के दाम जो हैं वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. उससे क्या हो रहा है कि जो FII जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है. वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है. तो उनकी जो रिटर्न्स जो हैं वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं. और तीसरा बात जो है मैं अभी कहता हूँ कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे, वो CPI का नंबर अभी कल परसों आया था, उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है. उसकी ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है. तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है. तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है. तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे, वो भी है. और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए. बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे. तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है उसमें एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी का दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट.
2: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. If the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because bank King performance has been very good as far as the corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
0: Well, let me first clarify a couple of points that you raised. The first point that you mentioned was about what was your first point? The first point.
2: Sir, I asked you about Bank Nifty, which took a hit today, and RBI's monetary policy meeting will take place, where there is the Reserve Bank assumption that the it'll go up by 25 basis points.
0: Now, the Reserve Bank of India's problem is that the liquidity in the economy is very, very high because of $100 billion of inflows coming in. So, if the government and the RBI have to tame the inflation, it has to control the liquidity.

0: supply chain disruptions is affecting the consumers of petroleum products, but the producers are clearly making a killing.
1: Well, there's no doubt that the OPEC and the other producing countries are going to benefit from this. This is, to my mind, par for the course. What it also means that this money that they are making will have to be used, invested in some places, and if it is going to be West Asian oil producers who are making more money, then I would say there is a medium to long term positive impact for countries in Asia, particularly India, which gain indirectly from more business, more investment, more manufacturing activities in that part. So while in the short term, India faces the impact of higher crude oil prices, its trade deficit may widen a bit, but if the oil prices do not stay elevated at unreasonably high prices like they are today, if they settle down, I would say that it's not an unmitigated disaster.
0: Let's have a look now at bullion market.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% की गिरावट के साथ 1,50,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,28,741 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी.
0: AKB, your comments on silver prices, which are relatively stable, but gold. One was expecting it to really pick up, but do you see the geopolitical uncertainty and really the tendency towards buying debt as securities, well, by arbitrages as the reason why gold prices are coming down?
1: Gold is and silver also are become instrument for investing your surplus resources is a store of value, and which is what we are seeing right now, where Indians are investing in gold. As a matter of fact, India imports a lot of gold and silver as well. So this is what exactly is happening.
2: बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
1: नमस्कार.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark, domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. The country's overall workforce participation rate increases to 52.8% in August, the highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी.
5: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
4: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं.
5: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है. इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए.
4: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MT EL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में

0: वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमेरिका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while replying to a query during a media briefing in New Delhi today.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagged ship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. We urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: On talks between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently, Mr. Jaiswal said several issues were discussed during the meeting. He said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान

0: राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसमें केंद्र सरकार लगभग 90 और राज्य 10% का खर्च करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नमक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने शिवलाखा, भीमासर, देवलिया और चंदीसर स्थित 4 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नमक कंटेनर ट्रेन से नमक के परिवहन में सुविधा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की समग्र कार्यबल भागीदारी दर WPR अगस्त में बढ़कर 52.8% हो गई है, जो मार्च 2026 के बाद से उच्चतम स्तर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण WPR में 1.3% की वृद्धि हुई है और ये 55.8% पर पहुंच गई है। शहरी WPR में आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है और ये अगस्त माह में 47% रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while replying to a query during a media briefing in New Delhi today.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagged ship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. We urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: On talks between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently, Mr. Jaiswal said several issues were discussed during the meeting. He said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. On the 70 lakh rupee reward announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the MEA spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. Chief ministers of 6 states today signed the Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, it will become an important chapter in history. Mr. Shah said the central government will bear a

0: हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोकल

0: का एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
0: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का यह शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2000

0: 22 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
1: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
2: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early

0: সত্যি মনে রাখার বিষয় যে যেটা ভুলে যাচ্ছে সেটাকে মনে করলে হবে না, আমাদের সব কিছু মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে পারবো এটা কিন্তু
1: যত ভুলে যাবো ভাবো ততই ভুলবো।
0: একদম, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, এত সুন্দর করে বিষয়টা আমাদের সামনে সহজ করে তুলে ধরলেন
2: এবং এত দিক থেকে, এত নানা রকম দিক থেকে। অ্যালজাইমার্স এর উপলক্ষেই আজকের এই বিশেষ পর্বটি আপনাদের জন্য ছিল এবং স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন, এখনও আছেন এ শহরের প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অংশু সেন। ডাক্তার সেন, আপনার সারাদিনের ব্যস্ততার পরেও যে আপনি আমাদের সময় দিলেন,
1: আমার ভালো লাগলো,
0: অনেক ধন্যবাদ। আজকের মতো আপনাকে শুভরাত্রি জানালাম,
1: শুভরাত্রি
0: কথা হবে,
2: শুভরাত্রি আমাদের বন্ধুদেরও। তবে না, আমরা ফিরে আসবো কিন্তু 11:10 এই পর্ব থেকে। কল্পনা সঞ্জয় বিদায় দিচ্ছি, dunia.com এ 11:10 আমরা আবার লাইভ হব, কেমন?
3: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মেন শক্তি সিং। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
4: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए, दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
3: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
5: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
3: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूक दास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
7: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
6: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief Ministers of 6 states today signed the Kishaw Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, this event will become an important chapter in history. He said that the central government has declared the Kishaw project a national project. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in 6 cities including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia today issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplane struck Taiz province of Yemen, killing 3 people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi today. She said that the increase in the monthly incentive was an important step towards recognizing ASHA workers' contribution and ensuring their financial security. Ms. Gupta said that it will boost their enthusiasm for their work and help them continue their services. There are 6,725 ASHA workers currently working in Delhi. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tonight and take a 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs set by Afghanistan, India comfortably scored 163 for 3 in 14.5 overs. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
8: গোল্ডেন সময় আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold 100.1 FM Gold শুনছেন dunia.com 100.1 FM Gold dunia.com
0: হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান এফ এম গোল্ড সঞ্জয় কল্পলাল আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আর এখন অনুষ্ঠান শুনবেন দুনিয়া ডট কম আর দুনিয়া ডট কমে অবশ্যই থাকবো আমরা 12টা পর্যন্ত শুনতে থাকুন সঙ্গে রাখুন এফ এম গোল্ড

0: দুনিয়া.com থেকে আজকের মতো সকলকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি, কারণ ঘড়ির কাঁটা সেরকমই বলছে, আবারও কথা হবে। আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি কল্পলাল,
1: আমি সঞ্জয়।
0: শুভরাত্রি।
2: কতদিন দেখিনি তোমার।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह
4: सुन चिन बांग्लादेश सेकेंड।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
5: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
3: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
6: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
3: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर्य राजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को